दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन।
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट TireForce.com.au.
3: We might all be different, but one thing unites us. We're all Victorians and we all deserve a say in its future. Are you ready to vote this state election Saturday 28 November? Not sure? Check your enrolled online. If you've changed your name or address, update your details. And if you've turned 18, you must enroll. So come on, Victoria. Make sure you're enrolled by 8 p.m. Tuesday 3 November and make your voice heard. Visit vec.vic.gov.au to enroll today. Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: Great finance offers available across Geely EX5, Stare EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsquare.com.au. Credit criteria TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
5: दिवाली लई वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स वेखो। मिसाल वजो दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदों तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरा ते उपलब्ध है, अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जां ऑनलाइन ते ना मिले। इस करके जल्दी करो।
6: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
7: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
8: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वुडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
9: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-Fold Landing।
10: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
11: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hifitravels.com.au te.
12: Ki chahida? Australia da visa launa? Ja visa le mashwara chahida? Mil juga. Sidde aao Garewal Visa Solutions. Australia vich har tarah diya visa loda layi ik parose yogna. Jo study visa, skilled visa, employer sponsored visa, DAMA, parent, partner te visitor वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
13: This autumn

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: क्या आप सोलर की सर्विसिंग के लिए फोन करने के बजाय घर में आग लगने का जोखिम उठाएंगे? अपने सोलर पैनल्स को अच्छी स्थिति में रखकर आप बिजली के कारण घर में आग लगने के खतरे को टाल सकेंगे तथा और भी अधिक प्रभावशाली सिस्टम के लाभों का आनंद उठाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में 2 साल या उससे भी पहले से सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो जोखिम ना उठाएं, सोलर सुरक्षित रहें। लाइसेंस धारक ई ग्रेड इलेक्ट्रीशियन से अपने सोलर की सर्विसिंग करवाएं और अधिक जानने के लिए energysafe.vic.gov.au पर जाएं। एनर्जी सेफ हमेशा, विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा अधिक।
3: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
4: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
3: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
1: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस MP द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, daviddavis.com.au।
2: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: शर्त लागू
1: थापी।
2: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
3: तू पलवान बनना, पलवान जम।
4: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप विडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्तूबर 16, 2026 नू।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold लेंडिंग। व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
3: दिल्ली विच करे मेरी भैन, वो बस एक रंग देख के समझ आती है कि उसनु अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। इसलिए भावे तुहाडी भैन नु अपनी पसंद चुनने लई वक्त लगता होवे जो उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे। रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लैन देन नहीं है, क्योंकि जिथे पैसा अगे बढ़ता है उथे जिंदगी अगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर में पैसे भेजो।
4: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
5: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
6: Desh bhakti to yaad aa gayi.
7: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
4: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
8: Woh ye border chal rahi hai?
4: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.

0: दिवाली लई वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स वेखो। मिसाल वजो दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदो तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरा ते उपलब्ध है। अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जा ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
1: टेंशन निरी टेंशन
2: की होया,
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तो आड़े नाल।
3: दिल्ली में घर पर मेरी बहन बस एक रंग देखते ही समझ आती है कि उसे अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। तो चाहे वो उस बहन के लिए हो जो चुनने में थोड़ा वक्त लगाती है, या उस बहन के लिए जो पहले से अपना मन बना चुकी है। रिमिटली के जरिए पैसे भेजना सिर्फ एक मनी ट्रांसफर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। क्योंकि जब पैसा आगे बढ़ता है तो जिंदगी भी आगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर में पैसे भेजें।
4: 14 साल तो वध उम्र दे ओ युवक जो हिंसक जुर्म करते हैं उन्हां नूं वधेरे गंभीर नतीजों का सामना करना पवेगा। हथियारां जां हिंसा नाल गड्डी खोण वर्गे अपराधां लई मुकदमा हुण बालगां वाली अदालत विच चलाया जावेगा। घर विच जबरदस्ती दाखिल होण वाले अपराधियों नूं जेल हो सकती है, हथियारां नाल गंभीर हमले वर्गे अपराधां लई लंबीआं सजावां हो सकदीआं हन। जो भविख दी पढ़ाई, रोजगार ते जिंदगी जीउण दे मौकिआं ते असर पा सकदीआं हन। होर जानकारी लई हिंसक अपराध लई वड्डिआं वाली सजा लिख के खोजो। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न वालों जारी।
5: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उत्ते ग्रोसरी ते हुण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुण टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुण सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए कित्थों?
6: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-01-246।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उन्हां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच। चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
7: हां जी रेडियो

0: Great finance offers available across Geely EX5, Stara EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsquare.com.au. Credit criteria, TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम, कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-Fold Lending.
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार. अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ. इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ.
3: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी, ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने.
4: ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ.
3: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
4: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ. 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ.
3: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ.

0: गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ
2: रेडियो हांजी 1674
3: Hi, this is Richard Sabah and you're hearing me on Radio Hanji 1674 AM.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

जी हाँ भाइयों और बहनों, बिना का गीत माला में आप सभी का स्वागत है। ये पहला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, धीरे धीरे चल, फिल्म है लव मैरिज। इस गीत को बोल दिए हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और फिल्म में काम किया है देवानंद, माला सेना, अभी भट्टाचार्य ने। साल 1959 में आई इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शंकर ज

0: Advisor. Call 02-9063-1618. Or Parameta Sid bhi, abhi New Delhi with me. IME Advisor. Thappi.
1: Main sochti si ke apna kabaddi di team banani.
2: Koi palwan banna, palwan jump.
3: Written and directed by Jaydeep Pudding. नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान, तेहोर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेडली सिनेमा करंट विच अक्टूबर 16 2026

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ले सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-fold lending.
4: Great finance offers available across Geely EX5, Starre EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootscray.com.au. Credit criteria, TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
5: Din par de kamma karan chi, kar paise bhejna shamil karna chahunde ho. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਵਰਲਡ ਰੈਮਿਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਲਡ ਰੈਮਿਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती सी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पलवान बनना, पलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वड़िंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके। टीचिंग में करियर बनाए इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा प्राधिकरण।

0: this autumn, laugh out loud with Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Udhe ek border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
5: Diwali lai Woolworths te har hafte milan wale shandar offers vekho. Misal vajon दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदो तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरा ते उपलब्ध है। अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जा ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
9: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
8: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹੋਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
10: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
11: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ

0: Great finance offers available across Geely EX5, Starre EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsgray.com.au. Credit criteria TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
1: पिछले साल काम वाली थां ते हुए एक हादसे विच मैं बुरी तरह चुलस गया सी। हाँ, ये समा औखा सी, पर मेरे काम वाली थां तो मेरा हाल चाल पुछया जांदा रहा कि मैं ठीक हाँ या नहीं। असी मिलके दफ्तर दे काम राही मेरे लिए काम ते वापस आउण दा तरीका लभ्या। हर रोज अपनी जिंदगी नूं मुड़ ली ते आउंदे वेखणा बहुत ही राहत भरिया एहसास सी।
2: काम वाली थां ते सट लगन तो बाद मुड़ काम ते आउणा सौखा नहीं हुंदा, पर ए अपनी जिंदगी मुड़ ली ते लियाउण दा एक अहम हिस्सा है। गल करदे रहो, योजना बनाउंदे रहो, लगे रहो। वर्क सेफ रिटर्न टू वर्क लिख के सर्च करो।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया। हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन। तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216-OLD-G-LONG-ROAD Hoppers Crossing Very B Toyota The Smart Choice।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
5: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, वन ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिक।
6: दिस ऑटम लाफ आउट लाउड विद आयुष्मान खुराना एंड सारा अली खान इन उड़ता तीर।
7: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
8: देशभक्ति तो याद आ गई,
9: देश कौन सा है ये भूल गया।
6: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स।
8: बॉर्डर चल रही है?
6: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है। फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमाज नियर यू।
10: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: पुलिस बूस बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
1: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
2: कित्थे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी तां ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, Lemon Hall.
4: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
5: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
6: Desh bhakti to yaad aa gayi.
7: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
4: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
8: Ye border chal rahi hai?
4: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
9: Tension, meri tension.
10: Ki hoya?
9: Athe immigration de inne pange ne yaar mukde hi nahi.
10: Kaka ji, tension chaddo, phone chakko. Call karo VY Immigration. जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
9: या 90-77-93
10: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
9: याद रखो 9077-9733।
10: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
9: हर कदम तुहाडे नाल।
11: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
12: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
11: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-466 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹੋਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
13: ਪਾਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
14: ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ।
13: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
14: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ।
13: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: 14 वर्ष से अधिक आयु के हिंसक अपराध करने वाले अपराधियों को अब अधिक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर जबरन वाहन चोरी जैसे अपराधों की सुनवाई वयस्क अदालत में होगी। घर में घुसकर अपराध करने वालों को जेल की सजा हो सकती है और हथियारों से गंभीर हमले जैसे अपराधों के लिए लंबी सजा हो सकती है, जिससे अपराधी के भविष्य की शिक्षा, रोजगार और जीवन के विकल्पों पर असर पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए हिंसक अपराधों के लिए वयस्कों जैसी सजा सर्च करें। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: Great finance offers available across Geely EX5, Star EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsgrade.com.au. Credit criteria, TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ थोड़ा कोई हल करिए।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो।
5: ओ बैलियां दे डोजे ने ताटाई रहंदे ने, ताकड़ जे कब्जा छडाई लैंदे ने। ओ बैलियां दे डोजे ने ताटाई रहंदे ने, ताकड़ जे कब्जा छडाई लैंदे ने। ਚੜਦਾ ਸਟੇਨ ਉੱਤੇ ਪਟਾ ਅਲੜੀ, ਨਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਬੜੀ ਹੈ।

0: हो।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: दिवाली लई वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स वेखो। मिसाल वजो दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदो तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरा ते उपलब्ध है। अते हो सकता है कि हर स्टोर ते जा ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
2: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है, flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travels से, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hi-fi-travels.com.au से।
3: हैप्पी
4: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
5: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
3: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हसनैन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।

0: लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या हो।

0: फ्लाइट मेलबर्न टू इंडिया या पाकिस्तान, सिडनी टू इंडिया या पाकिस्तान, कितने भी जा सकती है।
1: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल्स पे। योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 पे या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au पे।
2: मेरी गोली फिर तो मुक हो गई है, मैनू नवी दवाई दी पर्ची चाहिए है।
3: कि तुहानू पता है हुण केमिस्ट तों वी मिल जांदी है।
2: ओह, मैनू यूटीआई हो रही महसूस हो रही है, मैनू जल्दी तो जल्दी इस लई कुछ देना पवेगा।
3: इसनू केमिस्ट तो लाओ। हुण केमिस्ट भी जीपी कोल जाण दी लोड़ तो बिना पहला नालो वध बीमारियां दा इलाज कर रहे हन। यूटीआई तो लैके जनेऊ रोग दे इलाज अते होर बहुत कुछ तक। समा बचाओ अते इसनू केमिस्ट तों ही लै लो। भाग लैण वाले केमिस्टां अते उपलब्ध इलाजां नूं लब्भण लई chemistcarenow.wic.gov.au ते जाओ। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
4: हां जी हां जी,

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
1: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया,
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: VY Immigration and Education Consultant,
1: हर कदम तुहाडे नाल।

0: दिवाली लई वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स वेखो। मिसाल वजो दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदों तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरां ते उपलब्ध है। अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जां ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Woh ye border chal rahi hai?
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: Nada a ver, ¿eh?

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्या।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोहन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते

ना कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै।

श्री गहन लंब है असंभ है, अगम है अजम है, अभूत है अझूत है, अलोक है अशोक है, अकर्म है अभ्रम है, अजीत है अभीत है, अबा है अगा है, अमान है निदान है, अनेक है फिर एक है, प्रियांक प्रिया छंद।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सत दाता दयारं अछेती अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्त्वंग निनाथे नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अभंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम भहीन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जैन रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनार

लानकान अनुभूत अंग अभावं गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगंज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख दुदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल पलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिख है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंगख्याता सर्वंगज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ

गण मुदाम अर बार गंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विस अभंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनपौ अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनीय।

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन शांतो प्रसाद करनाले है अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तर निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गुण कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपुत अंतकुणा के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पविख भवान के पुपुत कौन कने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जब तार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान

श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की धार बछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वमर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फाज।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच्छा राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारा।

निराकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार कर चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

जय माता दी। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूँ आपका दास। आप सभी को नवरात्रि के पावन दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पांचवा दिवस। नवरात्रि आते ही हमारे आसपास कितनी फेस्टिवल वाली फीलिंग और वाइब हमारे मन में और स्वभाव में एक पॉजिटिव चेंज ले आती है। माँ के नौ नवरात्रे और हर दिन उनके नौ स्वरूपों की पूजा कर भक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज नवरात्रि का पांचवा दिवस है। इस दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता हैं। इसी कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का स्वरूप अत्यंत वात्सल्य पूर्ण है। वे अपनी गोद में बाल स्कंद को धारण करती हैं और कमल पर विराजमान हैं। इसी कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। उनका ये स्वरूप हमें ममता, करुणा, प्रेम और अपने आश्रितों को रक्षा करने की प्रेरणा देता है। पुण्य दर्शन में आज हम केवल माँ के स्वरूप का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि यह समझने का प्रयास करेंगे कि उनके गुणों को किस तरह अपनाकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सुधार ला सकते हैं, उसे और सुंदर बना सकते हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ, तो माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप में ममता और करुणा का आध्यात्मिक संदेश देने आप पहुंची हैं। हमारे घर, हमारे मंदिर, हमारे हृदय में माँ स्कंद माता, माँ स्कंद माता का स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होता है। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे की छोटी से छोटी परेशानी देखकर भी चिंतित हो जाती है। आप चाहे वो गीले बिस्तर पर सो जाए, किंतु अपने बच्चे को सूखा और सुखद वातावरण प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहती है। वह चाहती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, सही मार्ग पर आगे बढ़े। इसी प्रकार जब हमारे हृदय में करुणा विकसित होती है, तो हम दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यदि हम मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करें, किंतु दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए उसमें कटुता या कठोरता दिखाएं, तो हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति हमारे हृदय को तो कोमल बनाती है। माँ स्कंद माता से प्रेरणा लेकर हम अपने घर और डेली लाइफ में भक्ति को कैसे जोड़ सकते हैं, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया हूं।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। परिवार से प्रेम और जीवन में भक्ति। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा करते हुए बस यही प्रार्थना करनी चाहिए हमें। मां की गोद में बाल स्कंद का स्वरूप हमें बहुत गहरी बात समझाता है। बच्चे को केवल बड़ा करना ही माता पिता की जिम्मेवारी नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जीवन में सफलता हासिल करें और सुखी रहें। किंतु क्या हमने कभी सोचा है कि उन्हें यह भी सिखाया जाए कि सफलता मिलने पर अहंकार ना करें, किसी कमजोर का अपमान ना करें और कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। मां स्कंद माता के स्वरूप से प्रेरणा लेकर हम अपने घर में एक सुंदर परंपरा शुरू कर सकते हैं। दिन में केवल 5 मिनट परिवार के साथ बैठकर भगवान की कोई कथा सुने, कोई अच्छी आध्यात्मिक बात साझा करें या भगवान के नाम का स्मरण करें। बच्चों को उपदेश देने से अधिक प्रभावशाली है उन्हें अपने आचरण से दिखाना कि सच्चाई, करुणा और भक्ति का जीवन कैसा होता है, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कुछ समय बाद भूल सकते हैं, किंतु हमारा व्यवहार और हमारे संस्कार उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। आज मां स्कंद माता के पावन दिन पर स्वयं से एक प्रश्न पूछिए। हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए धन संपत्ति छोड़ कर जाएंगे, यह तो हम सोचते हैं, किंतु क्या हम उनके लिए अच्छे संस्कार और भगवान से जुड़ने का मार्ग भी छोड़कर जाएंगे? इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा। फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

0: लाल।
1: वेठ भी लाल।
2: वाह
1: ओ सब कुछ ही लाल है
2: बल्ले।
1: ये ते बड़ा ते ओदी बोटी केड़े रंग दी है?
0: लाल।
1: अच्छा, वो भी लाल
2: कोई मतलब वखरा कलर ही नहीं है लाइफ दे अंदर है। सब ही लाल है।
1: लाल ही होनी पर वो भी मैसेज लाल ही होनी।
0: लाल नहीं गोल्डन जा।
2: अच्छा
0: गोल्डन गोल्डन येलो जा।
1: वोटी वोटी गोल्डन है
0: की वोटी गोल्डन।
1: अच्छा वोटी गोल्डन है ते बच्चे
0: ते बच्चे बच्चे हैगे नहीं।
1: बच्चे हैगे नहीं है। ओ हले नवा नवा ब्याह होया है।
2: इकोनॉमी बड़ी खतरनाक है।
1: न्यूली मैरिड ने
0: की क्या
1: न्यूली मैरिड ने पला
0: हां मैरिड नहीं।
1: अच्छा मैरिड हैगे ही नहीं।
2: मैरिड नहीं है भाई।
1: ओके ओके ओके
0: पापा मैरिड कर सकते हैं।
1: हां कर सकते हैं। ओके
2: हजे की
0: जिदा आंसर बुझली तो फिर मैं दस्तिया के में मैरिड कर सकते हैं।
1: हो
2: बल्ले बल्ले
1: इदा आंसर हैगा दीवा।
0: हाँ जी
2: वेरी गुड।
1: हुण दसो किदा मैरी कर सकदे फिर
0: अपा मोमबत्ती नाल मैरी कर सकदे दीवा।
1: ओ
0: गुड दी दीवा।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस। आ ते बड़ा वधिया आईडिया वा है। गुड गुड गुड। वैसे भी वाइफां मोमबत्तियां नूं रोंदियां रहिंदियां।
2: क्या मेटाफर है ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: मैं एक और गल दसनी सी।
1: हाँ जी,
0: आज अपन कल अपन बुक फेर गए सी ते फिर आज अपन ने एक बुक लाके होनी है करे।
2: ओए गुड गुड गुड। सोचा कि केड़ी लाके आनी है।
0: अपन बाय करनी है।
1: वेरी नाइस।
0: बुक फेर विच हमें करेगा पहला ये बुक फेर तो पहला अपा टीचर दिंदे हुंदे ने एक बुक्स ते ओ बुक्स नहीं पर जिमे मैगजीन हुंदे ने ओदे विच बुक्स हुंदे ने जिहड़े बुक फेर विच होने ने ते फिर जिहड़े बुक फेर आ गया ते फिर सारे बुक्स जिहड़े जिहड़े मैगजीन विच दिखोंदे ने ओ बुक्स हुंदे ने बुक फेर विच।
2: ओके फिर तुसीं चूज़ कर सकदे हां।
1: गुड गुड गुड। ते पापा नूं की गिफ्ट दित्ता कल?
0: पापा नूं पेंट ब्रश।
1: ओए वाह
2: वाह।
1: गुड गुड गुड। वेरी नाइस।
0: पापा नूं बढ़िया लगदा पेंट करन दी।
1: गुड गुड। पापा नूं कहो भी फ्री वे ते ग्रिफ्टियां बनाओ पर जाके
2: बल्ले पैम दा वर्ड पार्ट 2
1: पैम दा वर्ड बनाओ।
0: मोस्टली पेंट करदा हुंदा गुरु नानक देव जी।
1: करदे हुंदे
0: ने गुरु नानक देव जी।
1: वाह पापा तो फिर वधिया पेंटर ने फिर।
2: वेरी नाइस
1: वेरी गुड।
0: ते एक बार मैं पापा नु क्या सी ये ओनु ओ लबदा सी
1: लबदे सी
0: ये डार्क ब्लू। ते फिर उन ते फिर पर्पल सी। ते फिर मैं क्या सी पर्पल यूज करो।
1: गुड गुड।
0: ते फिर बैकग्राउंड पर्पल बन गया। ते फिर अपने थोड़ा ब्लू लाया सी ते फिर डार्क ब्लू बन गया।
1: गुड हो गया। वेरी नाइस। थैंक यू तुम्हारा दिन बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय। ते नेक्स्ट साडे नाल ने मन्नत ते फतेह। उस तो बाद फिर युवराज तुसी रेडी रहो। मन्नत फतेह तुसी आने रहो।
0: मेरे
1: को इन एक बजे उठे ही जांदा महा ते मन्नत ते स्कूल भी पहुंच जांदी है।
2: मैं ते हजे तक सुत्ता पया
1: हैं। होर की एस को वेले
0: अज तो ज्यादा लोड़ सी आदली आन दी क्योंकि मेरा अज फाइनल था क्रिकेट मैच का साडे टीम दे नाल कुड़ियां दी टीम दे
1: नाल। अच्छा तुही भी खेडदे हो
2: क्रिकेट? ओए होए बड़े खिडारी ने यार।
1: वाह
2: गुड मन्नत। बैटिंग करदे हो बॉलिंग करदे हो?
0: दोनों ही कैसे ने पर ज्यादातर तो बैटिंग।
1: ओके ओके। ते तुहाडी फेवरेट कौन है क्रिकेटर?
0: बड़ा है नहीं मेरे को
1: हैं
0: कोई है नहीं फेवरेट
1: बहुत है।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन,
1: दिल्ली की।

रूस ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नु निशाना बना के बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए ने, और ये ओही बुनियादी ढांचा है जिस नु अमरीकी राष्ट्रपति की तरफ तो जंगबंदी समझौते के घेरे के विच लियांदा गया सी। ज़ेलेंस्की ने दोष मड़े आ के ऊर्जा खेतर दियां 26 ते तेल ते गैस खेतर दियां 4 सहूलतां दे उत्ते हमले जिहड़े किते गए ने हुण तक उन्हां नूं नुकसान पहुंचिया। दस दईए कि पिछले दिन ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सी कि यूक्रेन ते रूस के दरमियान एक एनर्जी सीज फायर हो गया। इसका मतलब यह है कि दोवें देश एक दूसरे के तेल गैस ते बिजली पैदा करन वाले टिकाणियां दे उत्ते हमले नहीं करनगे। हालांकि रूस ने उस समझौते दे उत्ते कदे कोई टिप्पणी नहीं कीती ते यूक्रेन दा कहना सी कि सानू इस समझौते दे बारे पता ही नहीं है कि कदों इह समझौता होया। उत्थे ही एक हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दे विच होया और यह बहुत बड़ा समुद्री हमला है। कहा गया है कि एक समुद्री बारूदी सुरंग है जिहड़ी जिहनू नवल माइन कह लिया जांदा है उस दे नाल टकराउण तों बाद 2500 कंटेनर दे नाल लदया एक बड़ा कारगो जहाज समुद्र च डुब गया। ये कंटेनर खाली नहीं सी, ये भरे हुए कंटेनर सी, समान इन्हां दे विच इत्थों गुजर रहा सी। ईरान दी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स दी नेवी दी जिहड़ी एक सैक्शन है उसकी तरफ तो इस जहाज दे डुबण दी पुष्टि की गई है। ईरानी मीडिया दे मुताबिक ये घटना बुधवार दे दिन वापरी जदों कारगो जहाज मध्य पूरब तो एशिया दे वल माल लैके जा रहा सी। अचानक हुए जोरदार धमाके दे कारण जहाज दे विच वड्डा सुराख हो गया जिस दे चलदे उत्थे पानी भरन लग्या। कुछ ही मिनटां दे विच जहाज समुद्र दे विच समा गया ते सारे 2500 कंटेनर समुद्र दीआं लहरां दे विच बिखर गए। ईरान दा दावा है कि इस जहाज दा एक अनधिकारक ते खतरनाक रस्ते तो लंघना ही इस दी खात्मे की एक वजह बने। इस चल रही जंग के दरमियान यह पहला मौका है जदों ईरान वालों समुद्री माइंस के नाल टकरा के किसी जहाज के डुबन की रिपोर्ट सामने आई होगी। इस तो पहला अमरीका यह दावे करता रहा है कि किसी भी किस्म की समुद्री बारूदी सुरंग जी ईरान ने नहीं बिछाई, जिन्हिया बिछाइया से अमरीकी नेवी ने खत्म कर दतिया ने। इसका मतलब यह है कि अमरीका के दावे भी फोके ही निकले। फिलहाल इस घटना संबंधी कई अहम सवालों के जवाब हाले मिलने बाकी ने कि जहाज किस देश का सी, इस दे उत्ते कुल किन्ने लोग सवार सी, यानी चालक दल का जिहड़ा क्रू मैंबर सी उन्हां दा की बनिया, इस दे बारे हाले भी कोई अधिकारक सूचना जिहड़ी उह जारी नहीं कीती गई। उत्थे ही भारत दे नाल जुड़ियां खबरां दी सांझ पाईए ते फ्रैंकफर्ट तो दिल्ली आ रही एयर इंडिया दी इक फ्लाइट नूं बंब दे नाल उड़ा देण दी धमकी तों बाद जयपुर डायवर्ट कर दिता गया। भारत की खबर एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस जहाज के जयपुर के विच एमरजेंसी लैंडिंग कल दे दिन करवाई गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 हाईजैक होने की शकी धमकी तो बाद ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते उतारिया गया। फिलहाल इसकी बाकी की जांच की जा रही है। उथे आस्ट्रेलिया के सबका प्रधानमंत्री कैविन रुड, भारत के मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैनेडा दी उन्हां दी हमरुतबा अनीता आनंद ते बरतानिया दे साबका प्रधानमंत्री रिशि सुनक भारत दे विच ब्लूमबर्ग दी तरफ तो जिहड़ा एक इकोनॉमी फोरम करवाया जा रहा उस दे विच शमूलियत करदे होए इकट्ठे हुंदे ने, इको स्टेज सांझी करदे ने। इस मौके दे उत्ते पिछले दिनां दे दरमियान चीन दे नाल जिहड़ा भारत दा विवाद चलिया इन्हां चारां नेतावां दी मौजूदगी दे विच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन नूं लैके कुछ टिप्पणियां कीतियां। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ते चीन दे विचकार संबंधां नूं आम बनाउण दे लई असल कंट्रोल रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दा स्थिर होना बहुत जरूरी है। उन्हें इस गल दे उत्ते जोर दिता कि सरहद दे उत्ते किसी भी तरह की अशांति दे माड़े नतीजे निकलणगे। जयशंकर ने दोवां देशां दे विचकार व्यापार ते निवेश दे प्रसार नूं होर भी मजबूती दे नाल अगे वधाउण दी लोड़ दे उत्ते जोर दिता। उथे भारत दे नाल जुड़ियां खबरां दी सांझ अगे तोरी है ते साल 2022 दे विच उत्तराखंड सूबे दे एक रिजॉर्ट दे विच मारी गई 19 साल दी लड़की अंकिता भंडारी दे मापियां दी तरफ तों कल दे दिन नवीं दिल्ली दे विच इंडिया गेट दे नेड़े रोस मुजाहरा कीता गया। उन्हां मंग कीती कि जदों तक इस मामले दी इस कतल कांड दी सीबीआई दी तरफ तो जांच पूरी नहीं हुंदी सी उदों तक भाजपा नूं अजिही की काली पै गई सी कि इस कतल कांड दे विच प्रमुख तौर दे उत्ते कथित दोषी दा नाम जिहदा सामने आ रिहा सी भाजपा आगू दुष्यंत कुमार उहनां नूं सिक्किम दे नवें राजपाल वजों नियुक्ति क्यों दित्ती गई। अंकिता दे परिवार दा दोष है कि इस मामले दे विच कथित वीआईपी शमूलियत
ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: दिस ऑटम लाफ आउट लाउड विद आयुष्मान खुराना एंड सारा अली खान इन उड़ता तीर।
3: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
4: देशभक्ति तो याद आ गई,
5: देश कौन सा है ये भूल गया।
2: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स।
5: बॉर्डर चल रही है?
2: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है। फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमाज नियर यू।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाय बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
8: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
6: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old G Long Road Hoppers Crossing। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
9: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com।
10: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
11: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
12: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
13: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
12: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर,
14: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
15: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ आस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
4: Great finance offers available across Geely EX5, Starre EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsgrade.com.au. Credit criteria TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
7: ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਂਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਾਮਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 0490054596। ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ .com.au ਤੇ ਜਾਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।
16: ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਵੁਲਵਰਥਸ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰਸ ਵੇਖੋ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਾਵਤ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਐਵਰੀਡੇ ਗੋਲਡ 5 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ $12.50 ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ $2.35 ਦੀ ਬਚਤ। ਇਹ ਖਾਸ ਆਫਰ 20 ਅਕਟੋਬਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ।
17: ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰੁਗਨਿਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਓ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ 0430-123-394। ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਓ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰੁਗਨਿਨਾ ਵਿੱਚ।
18: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
19: Attention, please. ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਹਾਈ ਫਾਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੇ। ਯੋਰ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਰੇਟਡ 4.9 ਸਟਾਰ ਔਨ ਗੂਗਲ। ਬੁੱਕ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ। ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1300-533-311 ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ highfivetravels.com.au ਤੇ।

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पलवान बनना, पलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: जदो तुहाडे लई जां तुहाडे किसे प्यारे लई सही होम केयर प्रोवाइडर चुनन दा समां आउंदा है तां माई केयर दे साडे केयरस मेलबर्न अते इस तों बाहर भी तुहाडी मदद लई तैयार हन। असी बजुर्ग आस्ट्रेलियाई लोकां नू निजी देखभाल योजनावां, उन्हां दी भाषा बोलण वाले केयरस अते समर्पित देखभाल साथी नाल घर विच ही रहण विच मदद करदे हां। 1-800-642-273 ते फोन करो जां माई केयर होम केयर लिख के खोजो। यह है MICAR।
4: ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
5: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
4: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
6: ਵਿਆਹ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਜੁਐਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ, ਬੁਲੀਅਨ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ। ਜੈਨੂਇਨ ਜੁਐਲਰੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਫਾਸਟ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 5/150 ਫਾਰਮਰਸ ਰੋਡ, ਤ੍ਰੁਗਨੀਨਾ ਅਤੇ 347 ਲੌਂਗਸਟੇਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ऑस्ट्रेलिया चा अपना कार लेना या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्टगेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-Fold Lending।
7: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमार्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: दिवाली लई वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स वेखो। मिसाल वजों दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदों तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरां ते उपलब्ध है। अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जां ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
1: दिल्ली में घर पर मेरी बहन बस एक रंग देखते ही समझ आती है कि उसे अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। तो चाहे वो उस बहन के लिए हो जो चुनने में थोड़ा वक्त लगाती है, या उस बहन के लिए जो पहले से अपना मन बना चुकी है। रिमिटली के जरिए पैसे भेजना सिर्फ एक मनी ट्रांसफर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। क्योंकि जब पैसा आगे बढ़ता है तो जिंदगी भी आगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर में पैसे भेजे।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-1516-16 quicksignage.com.au।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए कित्थों?
4: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
6: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
7: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालों तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
10: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
11: Desh bhakti to yaad aa gayi.
12: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
9: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
12: Woh ye border chal rahi hai?
9: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas.

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।